नमः। ओम श्री साई आनंददाय नमः। ओम श्री साई आर्तत्राण परायणाय नमः।

ॐ श्री साई साधु मानस परिशोधकाय नमः। ॐ श्री साई साधकानुग्रह वटवृक्ष प्रतिष्ठापकाय नमः। ॐ श्री साई सकल संशय हराय

राधा के नटवर लाल कन्हैया, गोकुल बाला गोपरिपाला, राधा के नटवर लाल कन्हैया। नंद कुमार